0: You are tuned into Friday with Richa at 5 EBI 103.1 FM. If you miss a live program, don't worry. Go to www.5ebi.com.au and click Radio on Demand. To listen to previous programs, click Indian Hindi under Friday and tune into the amazing world of Bollywood music. Listen and learn about Bollywood history, updates, information, and of course, enjoy. Join Richa every Friday at 5 p.m. You are listening to Friday with Richa.
1: गुड इवनिंग, आदाब, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों. मैं हूं आपकी अपनी रेडियो हमसफर रिचा और आप सुन रहे हैं फ्राइडे विद रिचा 5 EBI रेडियो पर, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं कुछ ऐसी बातें जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाएं, साथ में कुछ मजेदार खूबसूरत नगमे जिससे हमारे शो का मजा बना रहे. तो आज हम एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं, मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ पर. जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपने मन की आवाज को अनसुना कर देते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कैसे अपने ही अंदर के सन्नाटों को समझा जाए और कब जरूरत होती है मदद लेने की. दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मानसिक स्वास्थ्य में जो इंटरेस्ट लेती हैं, बहुत ही सीनियर जीपी डॉक्टर नीति वर्मा, जिनके पास वर्षों का अनुभव है लोगों को सुनने, समझने और सहारा देने का. तो चलिए करते हैं मन से मन की बात. स्वागत है डॉक्टर नीति का.
2: थैंक यू रिचा मुझे इनवाइट करने के लिए. आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी कि हम अंदर के सन्नाटे को सुने. आई थिंक मैं कहूँगी कई बार अंदर सन्नाटा नहीं, अंदर बहुत सारा तूफान चल रहा होता है, बहुत सारी नॉइज होती है. सो एनीवे, आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चंस.
1: ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ का सही मीनिंग क्या होता है और हम कैसे समझें कि हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की जरूरत है.
2: देखो, मानसिक एंड फिजिकल और मेंटल जिसको बोलते हैं, सॉरी मेरी हिंदी परफेक्ट नहीं है, फिजिकल मेंटल गो टुगेदर. जब तक आप मानसिक रूप से हेल्थी नहीं होगे, आप कभी फिजिकली हेल्थी हो ही नहीं सकते, बिकॉज दे गो टुगेदर. जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम सांस लेते हैं, हमारी लंग्स सारा टाइम काम कर रही होती है, सबकॉन्शियसली काम कर रही होती है. सिमिलरली हमको मेंटल हेल्थ को भी ऐसे ही लेना चाहिए. हमारा जो ब्रेन है वो सॉर्ट ऑफ हमारी लंग्स हैं, उनको भी सबकॉन्शियसली काम करना चाहिए. वो हम फिजिकल काम तो करते हैं, लेकिन मेंटल अगर हम अवेयर होंगे तो हम मेंटल सांस भी लेंगे. So I think मैं सोच रही थी इस क्वेश्चन के बारे में, एंड आई वुड से कि फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, कि हमें हाँ मेंटल हेल्थ चाहिए. या दैट अवेयरनेस इज ऑफ्टन इनाफ. फिर हर एक की अपनी जर्नी होती है.
1: ये बात तो ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम डेली लाइफ में अवेयरनेस ही भूल जाते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है. हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, योगा कर रहे होते हैं, जिम जा रहे होते हैं, लेकिन मन के लिए क्या करना है वो शायद मुझे लगता है जनरल लोग समझ ही नहीं पाते हैं उसे.
2: या दैट्स व्हाई वो जो बोला था अंदर का सन्नाटा, आई थिंक अंदर की बहुत आवाजें होती हैं, तो वो आवाजों को शांत करने के लिए हम फिजिकल एक्टिविटी तो करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, यू नो बातें करते हैं. कई लोग यू नो बोलना शुरू हो जाते हैं अपनी एंजाइटी को हाइड करने के लिए. बट सबसे पहला स्टेप है सांस लेना, मेंटल ब्रेन को सांस लेना, विच मीन्स टाइम आउट, विच मीन्स थोड़ा सा क्वाइट टाइम, थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन. सबसे पहले आप यही करना सीख जाएंगे. और लोगों को अगर क्वाइट नहीं अच्छा लगता, तो वन वे इज यू नो बी, जैसे बोलते हैं, इफ यू आर गोइंग टू डांस बी द डांस, इफ यू गोइंग टू गो फॉर अ वॉक बी द वॉक. सो अपने आप को उसमें इमर्स कर लेना,

0: एंड ऑटोमेटिकली मन शांत हो जाता है. सो मेंटल हेल्थ स्टार्ट्स विद दैट इंट्रोस्पेक्शन, टाइम, स्पेस, ब्रीद, अलाउ योर ब्रेन टू ब्रीद, सांस लो.
1: तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अक्सर हम शारीरिक बीमारी को तो पहचान लेते हैं लेकिन मानसिक थकान या दुख को नजरअंदाज कर देते हैं. आपको क्या लगता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं?
0: एक शॉर्ट आंसर है इसका, बैड हैबिट. हम अपनी आदतों से मजबूर हो जाते हैं, हमारी आदत बन जाती है बिजी रहने की, ये करना है वो करना है. सॉर्ट ऑफ वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. हम जब छोटे होते हैं तो हम इतना नहीं सोचते. यू रिमेंबर अ चाइल्ड, अब बच्चा होता है, आज में जीता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कल तूफान आने वाला, कल वॉर हो रही है, कल मेरी मशीन काम नहीं कर रही. वो अपनी मस्ती में रहते हैं, खेलते हैं. वी आर बोर्न लाइक दैट. फिर क्या होता है, हमारे पे प्रेशर्स होते हैं सोसाइटी के, एनवायरनमेंट के, घर के, हमारी सोच जो होती है स्कूल में डिफरेंट, घर में डिफरेंट. सो वो सब प्रेशर्स आते हैं, दे चेंजेस, दे मोल्डर्स. सो कई बारी हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमारी आदत ही खराब हो जाती है. हमें आदत हो जाती है ना सोचने की. अगर आप थोड़ा सा पॉज करके सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर you are meant to be living in the present. आप ट्राइबल्स को देख लो, बच्चों को छोड़ो, ट्राइबल्स को देख लो. यू नो, हम अपने आप को, हम अपनी आदत ही खराब कर देते हैं. यू नो, जैसे मैं थोड़ी देर पहले रिचा से ये थोड़ा सा डिस्कशन कर रही थी, एंड वी वर जस्ट सेइंग ये सोसाइटी को प्लीज करना भी ठीक है, थोड़ा सा ऑर्डर लाना ज़रूरी है, थोड़ी सी रूल्स होने चाहिए सोसाइटी में, नहीं तो सब जंगल बन जाएंगे, सब लोग भागेंगे इधर उधर, एंड यू नो डाका होगा, चोरी होगी, पीपल विल बी रूड. तो वो चीज़ें ज़रूरी है लेकिन बैलेंस.
1: बिल्कुल ठीक बात है. अब बचपन तो हमें बहुत ही बच्चा एक हंसना खेलना और खुश रहना सिखाता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समय के साथ हम बदलते जाते हैं, और शायद बदलना ज़रूरी भी होता है. लेकिन जैसा कि आपने बोला कि कुछ रूल्स के अंदर अगर हम प्रेजेंट में रहें और अपने से बात करें, जिसे आपने शायद एक बार पहले कहा था कि मी टाइम, अपने लिए भी समय निकालना, या हम जो भी करते हैं, वॉक पे जा रहे हैं तो वॉक के साथ रहें, पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से पढ़ रहे हैं, कहीं और डिस्टरबेंस या डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, ऐसा ही शायद आप कहना चाह रही हैं. बातें गहरी हैं और दिल को छू रही हैं डॉक्टर नीति. तो चलिए थोड़ी देर थोड़ा संगीत की बाहों में सुकून तलाशते हैं. अगला नगमा जो शायद आपके जज्बात को भी आवाज़ दे देगा. दोस्तों चलते हैं आगे और सुनते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत.

0: जिंदगी हर सुबह एक नई शुरुआत देती है और हर शाम एक सीख देकर जाती है। दोस्तों, ये जो सॉन्ग अभी आपने सुना, इसे हमने लिया था फिल्म परिणीता से और इसे गाया है सुनिधि चौहान ने। तो दोस्तों, फ्राइडे विद रिचा में आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पर और हमारे साथ हैं सीनियर जीपी डॉक्टर नीति वर्मा। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो डॉक्टर नीति, आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी ये शब्द बहुत सुनने को मिलते हैं, सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आप इसके बीच का फर्क और पहचानने के तरीके हमें समझा सकती हैं?
1: देखो, दो चीजें हैं। एक तो है साइकियाट्रिक एंजाइटी, साइकियाट्रिक डिप्रेशन, जो आपको पूरी तरह से आपकी लाइफ बदल देता है, वो तो है डिजीज, राइट। बट जो नॉर्मल हम देखते हैं, जो मेरा एक्चुअली रोज का काम है, आई एम ए जीपी, आई एम नॉट ए साइकियाट्रिस्ट, तो वो होता है रिएक्टिव, वो होता है इमोशंस, वो होता है कि हमारे आसपास जो हो रहा है उसको हम बोल देते हैं हम डिप्रेस्ड हैं, वो रिएक्टिव इमोशंस हैं। उसका एक बहुत सिंपल सा रूल जो मैं पेशेंट्स को बहुत बारी बताती हूँ, इमोशंस आर देयर फॉर अ रीज़न, जो हमें नेचर ने दिए हैं वो नॉर्मल है। इमोशंस हमारे कंट्रोल में कभी नहीं होते, लेकिन इमोशंस को डील करना हमारे कंट्रोल में होता है, वो हम सीख सकते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा डाइवर्ज कर रही हूँ। क्वेश्चन इज अबाउट रियल डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। वो जो होता है रियल डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी, उसको आप छोड़ दीजिए। इफ़ यू कैन जस्ट रिकग्नाइज सिंपल थिंग्स, आपकी स्लीप थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है जो नॉर्मल थी, आपका एपेटाइट या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एंजाइटी और डिप्रेशन में ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और यूजली अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली है जो आपके साथ इतने क्लोज हैं कि ऑनेस्टली बात करें और वो बोले समथिंग इज़ नॉट राइट, आई मीन माई टिपिकल एग्जाम्पल इज़ कि विमेन जब उनके बेबीज होते हैं, पोस्टनेटल डिप्रेशन होता है, तो यूजली उनके पार्टनर्स लेके आते हैं, बोलते हैं ये ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है। सेम थिंग विमेन का इट्स ईजी बिकॉज उनकी लाइफ में ये चेंजेस आते हैं बेबी के टाइम में और पेरीमेनोपॉज के टाइम में, मेनोपॉज के टाइम में एवरीबॉडी इज़ अ लिटिल बिट अवेयर, बट मेन में भी उतना ही होता है। जब लाइफ में चेंजेस आते हैं, जॉब के लिए ढूंढ रहे होते हो या बिकॉज ये हिंदी प्रोग्राम है, हम बहुत से लोग ओवरसीज अपनी अपने कंट्री अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ आते हैं, बड़े चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड गोइंग बैक टू क्वेश्चन वन इज़, फर्स्ट इज़ बीइंग अवेयर कि कोई प्रॉब्लम है। आप सॉर्ट आउट तो तभी कर सकते हो ना जब आप आइडेंटिफाई करोगे कुछ प्रॉब्लम है, समथिंग इज़ नॉट ओके, या सो वो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं लाइफ के, लेकिन वो रियल डिप्रेशन भी बन सकते हैं। तो आई थिंक ये दो तीन चीज़ें अगर आप नोट करते हो, That's enough. That's the starting point.
0: You mean, Dr. Neeti, कि अपने प्रति अवेयर होना, being aware होना कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, उसको समझना, कुछ ठीक नहीं है, कुछ बातें चल रही हैं अंदर ही अंदर जो हमें परेशान कर रही हैं, या हमारे स्लीप में डिस्टर्बेंस है, या हमारा एपेटाइट कम या ज़्यादा हो रहा है, इसको पहचानना, या आसपास के हमारे लोग कह रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो इसको पहचानना और स्वीकारना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे बीच में चल रही है मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद मिलेंगे और डॉक्टर नीति से और बातें करेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग गाने सुनेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 5VBI 103.1 FM। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप अपनी बात कुछ शेयर करना चाहते हैं डॉक्टर नीति के साथ, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4573-52163 और हमारा ईमेल आईडी है radiovidrucha@gmail.com। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब दिल ना करे घर पे खाने का या बनाने का तो क्या करें?
2: भैरवी किचन है ना,
0: घर जैसा स्वाद और हाइजीन अगर दोनों ना मिले तो?
2: अरे भैरवी किचन है ना,
0: चटपटा भी हो और ज्यादा हैवी भी ना लगे।
2: भैरवी किचन है ना,
0: तो जल्दी से एड्रेस बताओ।
2: पैना हिल्स, वेस्ट एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया 5096।
0: और फोन नंबर
2: 04116511104। भैरवी किचन एक बार जरूर ट्राई करें।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: Tune in to Friday with Richa only at 5 EBI 103.1 FM. Relax with Bollywood hits and immerse yourself in the vibrant sounds of Bollywood. Join Richa for a musical journey at 5 PM every Friday. Don't miss out.

0: ब्रेक के बाद हाजिर हूँ मैं रिचा और आप सुन रहे हैं 5VBI 103.1 FM। तो दोस्तों, हम डॉक्टर नीति के पास चलते हैं दोबारा और बात करते हैं आज अपने बच्चे और यंगस्टर्स के बारे में। तो डॉक्टर नीति, बच्चे और यंगस्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और पढ़ाई और करियर को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो कोई उनके लिए सजेशन देना चाहेंगी आप?
1: रिचा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि हम और आप जिस दुनिया में पले बड़े हैं बहुत डिफरेंट थी। तो इस नई दुनिया के बहुत सारे रूल्स नहीं हैं, हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली में इसमें आइडियली क्या करना चाहिए। बट यू नो थिंग इज कि मेंटल हेल्थ के बहुत बेसिक चीज़ें हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, कभी डिफरेंट टाइप का था। अगर आप 1930s 40s में चले जाओ तो पीपल ग्रू अप इन वॉर, उनके वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू उन्होंने देखा है, देव सीन पीपल लूज लाइफ्स, खाने को कुछ नहीं था, एक डिफरेंट टाइप स्ट्रेस था। स्ट्रेस तो हमेशा लाइफ में रहता है। अभी बच्चों का जो स्ट्रेस है, यू नो, उनके ऊपर बहुत सारा दबाव इसलिए है बिकॉज बहुत साइड से उनके ऊपर प्रेशर आता है, सोशल मीडिया का, पीयर सपोर्ट का, पेरेंट्स का, यू नो, उनके पास इतने सारे ऑप्शंस है कि उनको समझ में नहीं आता क्या उनके लिए ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट तो सेम है, ठीक है, हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन बेसिक ब्रेन हमारा वही है। तो उसको मैच्योर होने में, जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं पाथवेज बनने में, थोड़ा टाइम लगता है और वो कॉम्प्लिकेटेड है। वो हमारे इमोशनल सेंटर से रेगुलेट होके फिर हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो होते हैं, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, पढ़ते हैं, और वो जाके फिर हमारे एवरीडे फंक्शनिंग से कनेक्ट होता है। तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इमोशनली बहुत लेबाइल होते हैं बच्चे, वो हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा सिस्टम समझा सकते हैं एज मेंटर्स, बिकॉज तुम्हारा इमोशनल वो सेंटर थोड़ा लेबाइल इतना नहीं है, वो थोड़ा ठहरा हुआ है। बेसिक दो चीज़ें हैं, स्लीप और फिजिकल एक्टिविटी। यू नो, ये दो चीज़ें अगर ठीक रहेंगी तो मोस्ट चिल्ड्रन ये जो है ना प्रेशर, उसको लेना थोड़ा सा सीख जाते हैं। एज पेरेंट्स यू हैव टू बी मेंटोर्स, एज टीचर्स यू आर मेंटोरिंग डिफरेंट वे, लेकिन ये मेंटोरिंग पेरेंट्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बच्चों को एक बहुत सिंपल सा स्किल है जो हम उसमें साइकोलॉजी साइकियाट्री में बोलते हैं, कॉलिंग कंपार्टमेंटलाइज, विच मीन्स वन थिंग एट अ टाइम। ये हम काफ़ी यूज़ करते हैं एंग्जाइटी में, जिसमें हम बोलते हैं कि आप अगर एंग्शियस हो रहे हो, यू वंडरिंग कि जैसे मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, से टीनेजर्स का, ओह मेरे एग्ज़ाम का क्या होगा, मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, एंड वो कुछ नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे गेट, जो बोलते हैं कि हमारा ब्रेन डेड हो गया है, वो ओवरलोड होता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि लुक, डिवाइड इट इंटू कंपार्टमेंट्स, कि आपने आज क्या करना है, और आज में नेक्स्ट 2 hours में क्या करना है, नेक्स्ट 4 hours में क्या करना है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल रूल विच वर्क्स विद एंग्जाइटी, विद एवरीथिंग। सो आप ये सिंपल सा टिप देके और इसको आप अपना कस्टमाइज कर सकते हो कि किसको क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ always going to be a stressful world, always going to be a complicated world, and you know, as parents you shouldn't get stressed yourself, take it as a challenge, see what you can do. Ideal world nahi hai, lekin aap try kar sakte ho.
0: ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि हर बच्चा अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, और हम अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, बच्चों की मदद कर सकते हैं जितना हम समझते हैं, क्योंकि हमारा समय और आज बच्चों का समय बहुत ज़्यादा अलग है, और उनके ऊपर जो प्रेशर है वो हमारे लिए शायद समझ पाना भी मुश्किल होता है, बट हम कोशिश ज़रूर करते हैं। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहूँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम किसी को अपने आसपास देखते हैं कि कोई बहुत ही इमोशनल रूप से टूट रहा है, परेशान है, तो हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो ठीक नहीं है बट हम उसकी मदद करना चाहते हैं। कई बार हम कुछ कहते हैं और कुछ नहीं भी कहते, तो क्या करें क्या नहीं करें, कुछ सजेशन दीजिए।
1: देखो, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंटली बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है कई सालों से, आर यू ओके। आपने देखा होगा कार्स के पीछे लिखा हुआ है, यू नो, न्यूज़पेपर्स में आता है। सो बहुत सिंपल सी बात है, आर यू ओके। आप अगर किसी को बोलते हो तो यू आर जस्ट ओपनिंग योर सेल्फ अप, ओके। बट ये आर यू ओके ऊपर ऊपर से भी कहा जा सकता है। अगर आप में हिम्मत नहीं है, वो इमोशनल एनर्जी नहीं है पहले, तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इसके सुनने के लिए आपके पास हाथी जैसे कान चाहिए, यू नो, सिंपल बिग ईयर्स। द ओनली थिंग यू कैन डू फॉर पीपल जिनके ऊपर स्ट्रेस है, लिसन लिसन लिसन लिसन। अपनी राय मत दो इनिशियली, या आप सोच रहे हो ये क्या बेवकूफ है, ये क्या कर रहा है, दैट कैन ऑल स्टे इन योर माइंड। अपना माइंड क्लियर करके सिर्फ सुनो, समटाइम्स दैट इज ऑल दैट इज नीडेड। रिमेंबर वो गाना है, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए। यू नो, जब मैं सोच रही थी, दैट सॉन्ग केम टू माई माइंड। कई बार सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, एंड इतना ही सहारा चाहिए होता है कि कोई सुनने के लिए है, दैट इज इनफ। So, you know, my advice is, किसी को आप देख रहे हो, ये नहीं पूछो, don't get, you know, beyond yourself saying क्या है कि, और ये मत सोचो कि तुमने बहुत experience कर रहा है और तुम बहुत सारी advice दे सकते हो। Just सुनो, just सुनो, इतना ही बहुत होता है।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि सुनने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होती हैं, क्योंकि हम अपने मन की बातों को शब्दों में पिरो के बोल पाते हैं। क्योंकि वही जो एक तूफान और सन्नाटा हम कहते हैं ना, कि अंदर जो एक द्वंद्व चल रहा है, बहुत सारा फाइट जो अंदर चल रही है मन के, जब हम उसको अपने होंठों तक लेके आते हैं और किसी से कह पाते हैं, तभी कहते हैं ना कि मन की बात हल्की हो गई किसी से कह के। तो कोई एक कान चाहिए या कोई एक दोस्त चाहिए, और कोई अपनापन हम ढूंढते ही हैं किसी के अंदर, जिसके साथ हम अपने दिल की बात कह सकें। तो आपने बहुत ही अच्छे तरह से हमारे श्रोताओं को समझाया। तो आपने जो गीत कहा, चलिए उसी गीत को सुन लेते हैं।
2: तेरी आँखें

0: तो दोस्तों, इस गीत के साथ हम अपने आज के प्रोग्राम को यहीं विराम देना चाहेंगे और यही कहना चाहूंगी मैं कि मन भी तन जितना ही जरूरी है, एक मुस्कुराता चेहरा भी अंदर से टूटा हो सकता है। इसलिए आइए खुद से और दूसरों से संवेदनशीलता के साथ जुड़ें। मैं थी आपकी होस्ट रिचा, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली बार एक और जरूरी बात के साथ। हमारे साथ होंगी डॉक्टर नीति, जो कि हमसे बात करेंगी मेंटल हेल्थ पर। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ भी हमसे शेयर करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस, तो हमें जरूर लिखिए। आपका अनुभव किसी और के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। हमारा फोन नंबर है 0457352163 और हमारा ईमेल आईडी है radiowithricha@gmail.com। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार, बाय बाय, शुभ संध्या।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: Station sponsor.
3: Good evening. You're listening to 5EBI FM 103.1, your multicultural radio station. The time at EBI is approaching 5:30, and it's time for some Slovenian community program. Sit back and enjoy it here on 5EBI FM.